सुहासिनी सुमधुरभा

आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 20वीं तिथि। तद अनुसार 11 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों की प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार

0: सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपद, अशोका रोड, बारह खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आरंभ में सुनिए समूह स्वर में ये मात्र वंदना। रचना है मंजर भोपाली की।

समूह स्वर में मात्र वंदना अभी आपने सुनी। आइए अर्चना कार्यक्रम में अब सुनते हैं राजेश मिश्रा के स्वर में महावीर वंदना, जिसको लिखा है रेखा रावल ने और संगीतबद्ध किया है कमलेश रोमी ने।

अभी अपने राजेश मिश्रा के स्वर में महावीर वंदना सुनी और आइए अर्चना कार्यक्रम में अब सुनते हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के स्वर में सितारा देवी की ये लिखी रचना।

हुसैन मोहम्मद हुसैन के स्वर में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी और आइए अर्चना कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं यूसुफ आजाद कव्वाल और साथियों की आवाजों में पयाम सईदी का कलाम।

पाकर जक्षण बड़ा है काबा, मंजिल है इसकी जन्नत और याद है मदीना। गाड़ी है ये निराली, शान इसकी आली, सीधी देकर है

बेकुली फरिश्ते मालिक है इसका मौला और नाम पंजा तनखा चलता है इसमें पंखा है मुस्तफा ड्राइवर है इसकी गार्ड हैदर है रुमिसा है अफसर हसनैन इसके चेकर सिग्नल की ड्यूटी पर है रॉस और खाजा पहरावे के मुंबल भलियों का उंडिया का जब पुल सिरात से गाड़ी चलेगी हमदम एक सिंह तो होगी जन्नत और एक तरफ जहन्नम जन्नत में जाए मोमिन रहमत नदी से चलता है इसका इंजन नेकी से बंदगी से ना जिसमें बिजली है ना मोबिल है ना पे

यूसुफ आजाद कव्वाल और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी। इस भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम अर्चना अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:25 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम विवरण में सभी श्रोताओं का स्वागत है और अब से थोड़ी देर के बाद हमारे श्रोता सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ भूले बिसरे गीत। पुराने जमाने के ये फिल्मी तराने आप सुनेगा सुबह 6:40 पर, सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम

Subah, subah. हर सुबह 7:45 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे महात्मा गांधी की आत्मकथा का धारावाहिक वाचन। लोक संगीत बुंदेली गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:15 पर, और सुबह 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे रूपक मैं हिंदी बोल रही हूँ। गुलदस्ता गजल और कव्वालियों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सुबह 10:05 पर। आपकी पसंद फरमाइशी फिल्में नगमों का ये कार्यक्रम होगा सुबह 10:30 पर। सुबह 11:00 आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 11:30 से होंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 5:02 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे युवा साथियों का मन पसंद कार्यक्रम युव वाणी। लिजा के लव्स और लम्हे ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर हमारे स्टूडियो से। शाम 5:35 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 6:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सदाबहार गीत। शाम 7:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे वीएलआर एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत खेले जाने वाले फाइनल मैच का आंखों देखा हाल।

FM आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM पैंट 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ। गायक स्वर हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंगरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घोसाल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरित मानस का संगीत में पाठ अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 होने वाले हैं। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम फूले बिसरे गीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं लजवंती फिल्म से ये गीत गीता दत्त की आवाज में। लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत एसडी बर्मन का।

0: ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है, और आइए इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अगला गीत फिल्म आजाद से, जो लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, स्वर है लता मंगेशकर का, संगीत श्री रामचंद्र का।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं तांगे वाली फिल्म से ये गीत। आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना प्रेम धवन की, संगीत सलिल चौधरी का।

अब बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए

0: आए गया है पटल। जो कहानी आप सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अभी आप सुन रहे थे। श्रोता आपको बता दें आज सुबह 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे रूपक मैं हिंदी बोल रही हूँ।

0: हम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ क्षणों की प्रतीक्षा।
2: इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समुद्घोषितवान् यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रिय विधि नियमानां संवाद विधेः बहुपक्षीय सहाय्य भावनाधारेण सुरक्षित शांतिपूर्ण शाश्वत रूपकस्य अंतरिक्ष मंडलस्य पूर्णं सुदृढं च समर्थनं संधारयति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रोक्तवान् यत् वैज्ञानिक तथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्र लोक कल्याणाय विनियुक्तानि स्युः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एतानि वक्तव्यानि फ्रांस देशस्य पैरिस नगरे समायोजिते अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलनावसरे आभासीय माध्यमेन प्रकाशितानि।
3: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् अंतरिक्ष कक्षासु समृद्धि संघर्ष स्थाने सहयोग भावना अल्पकालिक लाभ स्थाने शाश्वतता बहिष्करण स्थाने च समावेशिता प्राथमिक रूपेण स्यात् इति प्रतिपादितवान्। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनस्य भूमिकां प्रतिपादयन् श्री मोदी प्रोक्तवान् यत् स्वीय कार्यदक्षता कारणेन स्वीय ऐतिहासिक अभियानैश्च एतया संस्थया वैश्विक प्रशंसा समर्जिता। अष्टादशं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं श्वः प्रभृति नवदेहल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र समारप्स्यते। सम्मेलनम् आलक्ष्य भव्यायोजनस्य समग्र सज्जाः सम्प्रति अन्तिमे चरणे प्रविष्टाः। द्विदिवसीय शिखर सम्मेलने

0: ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारतम, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात इत्येतं समेत्य एकादश प्रमुखाः विकासशील अर्थव्यवस्थाः मञ्चं धारयिष्यन्ति। भारतस्य अध्यक्षतायां समायोक्ष्यमाणस्य एतस्य शिखर सम्मेलनस्य विषयः नवाचार सहकार सतत विकासाय च निर्माणमिति। शिखर सम्मेलने रूस देशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्यसौ, चीन देशीयः राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग इत्यसौ, दक्षिण अफ्रीकायाः राष्ट्रपतिः सिरिल रामाफोसा इत्यसौ, मिश्र देशीयः राष्ट्रपतिः अब्देल फतह अल सीसी, इंडोनेशियायाः राष्ट्रपतिः प्रभुवो सुबियांतो, ईरान देशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेकिश्कियन इत्यसौ, अबुधाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यसौ, अथ इथियोपियायाः प्रधानमंत्री अबी अहमद अली इत्येतं समेत्य वैश्विक नेतारः सम्मेलने भागं भजिष्यन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनम् आलक्ष्य दिल्ली यातायात आरक्षी बलेन संसूचितं यत् अद्य मध्याह्ने द्विवादनतः सार्ध अष्टवादन पर्यन्तं प्रमुख मार्गेषु यातायाते परिवर्तनं नियन्त्रिता च व्यवस्थिता प्रभवेत। आरक्षी बलानुसारेण आपत्कालिकाः आवश्यकाश्च सेवाः प्राथम्यं भजेरन्। सममेव दिल्ली मेट्रो यान विभागेनापि आवश्यकाः सूचनाः प्रसारिताः। अन्ते च क्रीडा वार्तासु, महिला क्रिकेट एशिया चषक स्पर्धायाः उपान्त्य चक्रे गतरात्रौ भारत बांग्लादेश दलयोः मध्ये समायोजिते द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेश दलं 40 धावनांकैः पराभूय एशिया चषक स्पर्धायाः निर्णायके चक्रे स्थानं संप्राप्तम्। दुबई नगरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रांगणे समायोजिते एतस्मिन् द्वन्द्वे भारतेन प्रथमं दण्डेन क्रीडयता स्पर्धा विजिता इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह।

सुबह सुबह सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें हमारा नमस्कार। श्रोताओ, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में सारी मानव जाति के आध्यात्मिकरण की बात करते हुए कहा था कि जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। श्रोताओ, विवेकानंद जी ने अपने इस कथन में संपूर्ण मानव जाति को धर्म, अध्यात्म और प्रेम की सच्ची परिभाषा बतलाई थी। जब से मानव मस्तिष्क ने अपनी चेतना की ऊंचाई को छुआ है, तभी से एक आत्मिक और रूहानी प्यास उसके भीतर जागी हुई है। हर देश, काल और परिस्थिति में मनुष्य जानना चाहता है अपने जीवन के अर्थ को, और मानव जीवन सच्चे अर्थों में तभी परिपूर्ण हो पाता है जब वो सृष्टि के हर मनुष्य और सभी जीवों के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है, और इसी स्वीकार बोध को आत्मसात किया था भारत देश ने। इसीलिए विवेकानंद जी ने भारत देश के बारे में अमेरिका में कहा था कि भारत देश दर्शन, धर्म, आचार संहिता, मधुरता, कोमलता और प्रेम की मातृभूमि है। इसीलिए देश ही हमारा जागृत देवता है, और हमें भारत में केवल आध्यात्मिक कार्य से ही विश्राम मिल सकता है। श्रोताओ, जब ये विचार पूरी दुनिया ने सुने, तब पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो गया हमारे देश के इस महान उद्देश्य को जानकर। स्वामी विवेकानंद जी ने सारी दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि पूरे विश्व में धार्मिक संकीर्णता के कारण मानव समाज की प्रगति बाधित हुई है, और ऐसे समय में भारत ने अपनी मूल चेतना को पहचाना और पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया। आज पूरी दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम की जो बात कही जाती है, जिसमें वसुधा यानी समस्त धरती और कुटुंब यानी एक परिवार या कुनवा, मतलब दुनिया के हर हिस्से की भूमि पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य एक ही परिवार का हिस्सा है, और जब दुनिया इस सोच को आत्मसात कर लेगी, तब प्रगति, उन्नति और समृद्धि चहुंओर दिखाई देगी। तो श्रोताओ, हमारी आज की सुबह सुबह का निष्कर्ष यही है कि आज वही ऐतिहासिक तारीख है जब विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत देश की उस आध्यात्मिक समृद्धि से पूरी दुनिया को परिचित कराया था। शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए वहां की एक पुस्तक प्रदर्शनी में सारे धर्म ग्रंथों को एक साथ एक के ऊपर एक रखा गया, और सबसे नीचे रखा गया श्रीमद् भगवत गीता को। और जब विवेकानंद जी को यह दिखाया गया, तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेस्ट फाउंडेशन यानी सबसे बेहतर नींव यही है, सबसे मजबूत नींव यही है। उनका ये जवाब सुनकर सभी निरुत्तर हो गए थे। श्रोताओ, हम सबको भी ऐसी ही उदारता का परिचय देते हुए ज्ञान की ज्योति पूरी दुनिया में जलानी है, जो आज के दिन विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में जलाई थी। सुबह सुबह में आज बस इतना ही।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय है बारिश में पशु आहार के बारे में जानकारी, और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बीके शर्मा। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत।
1: अगर हम कहें कि बारिश में पशुपालक को ध्यान देने की क्या बात है, तो बरसात में अपने पशुओं को सुबह के समय कम से कम आधी पेट, मतलब एक डलिया या एक जो उनका पात्र होता है उसमें, मतलब 4 से लेकर 15 किलो तक भूसा पहले उसको खिला दें, उसके बाद ही पशु को बाहर छोड़ें। यदि आपने पशु को खाली पेट सुबह से बाहर छोड़ दिया तो निश्चित रूप से जब पशु शाम को लौटेगा तो जितनी उसको हरी घास मिल रही है वो फुल पेट होके घर पे आएगा, और इससे पेट में टिम्पेनी ब्लॉट की समस्या आ सकती है, जो कि बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि जब गैस बनती है तो डायफ्राम जो पेट है वो उसके हृदय पे और फेफड़ों पर दबाव बनाता है, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में जाना बंद हो जाती है। और जब पशु फूलता है तो इतना वक्त भी नहीं होता है पशुपालक के पास कि वो डॉक्टर को बुला पाए, मतलब 1 से लेकर 1.5 घंटे के अंदर पशु की मृत्यु की संभावना होती है। तो गैस से बचने के लिए अपने पशु को आप जब भी हरा चारा, जैसे कुछ लोग ने देखा है कि जिस खेत में दवा डाल दी है नीदानाशक या कीटनाशक, उस खेत में से उनने चारा उखाड़ा अपने पशु को डाल दिया, निश्चित रूप से वो दवा चारे पर भी गई हो, तो ये टॉक्सिसिटी पॉइजनिंग का केस बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा चारा जिस खेत में आपने नीदानाशक या आपका कीटनाशक डाला है उस खेत का चारा भी पशु को ना खिलाएं। दूसरा, जो पोखरों में पानी भरा हुआ है, गंदा पानी, जैसे कि किसी खेत के बगल में एक गड्ढा है, खेत में आपने नीदानाशक या कोई दवा डाली है जहरीली, वो उसके पानी के बहाव में आ चुकी है और वो पानी पशु ने पी लिया, तो इस चीज का बारिश में बहुत ध्यान रखना है कि पशु को नलकूप का, घर का शुद्ध पानी पिलाएं, नदी नाले का पानी ना पीने दें, और जो हरा चारा नया आ रहा है इसको कतई ना खिलाएं, और यदि खिलाना भी है तो आप इसकी जब कम से कम वो 1.5 फीट ऊंचाई पा जाए उसके बाद आप काट के और भूसे में मिक्स करके ही खिलाना है। दूसरा, पशुपालक एक चीज का और ध्यान रखें, गलघोंटू का टीकाकरण शीघ्र करा लें। जो जानवर पास में जो नदी नाले हैं ऐसा गंदा पानी पीते हैं तो पेट में लिवर फ्लूक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, मतलब जो पेट के कीड़े होते हैं पटार जिसको अपन बोलते हैं, और लिवर फ्लूक एक चपटा पत्ती नुमा एक कीड़ा होता है जो लिवर में, मतलब बैठा रहता है, और आप जितना भी पशु को खिलाएंगे पशु का शरीर उन्नति नहीं करता, बढ़ता नहीं है और कमजोर दिन पे दिन होता जाता है। तो मैं पशुपालकों से ये स्पेशल रूप से कहना चाहता हूं कि जब भी मौसम में परिवर्तन हो, जैसे बरसात के पहले, गर्मी के पहले, सर्दी के पहले, अपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने वाली दवा एल्बेंडाजॉल 3 ग्राम की जरूर खिलवाएं सभी पशुओं को, जिससे कि उनके पेट के सारे कीड़े जब खत्म हो जाएंगे तो जो आप दाना पानी शरीर को दे रहे हैं दूध उत्पादन में भी कमी नहीं आएगी और शरीर भी नहीं गिर पाएगा।
0: कार्यक्रम कृषि संकेत अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर वीके शर्मा जानकारी दे रहे थे बारिश में पशु आहार की जानकारी के बारे में।
2: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए नई दिल्ली तैयार। भारत मंडपम में कल से होगा 2 दिवसीय आयोजन। इंदौर में आज से 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश में 17 सितंबर से 2 बड़े जनसेवा अभियान। 50 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को मिलेगी मुफ्त रजिस्ट्री। और 3 दिन के ब्रेक के बाद प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून। आज 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से भारत मंडपम में शुरू होगा, जिसे लेकर राजधानी में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। 2 दिन के सम्मेलन में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के नेता और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में पहुंचेंगे। संयुक्त राष्ट्र और WHO समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित है। प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए आज से इंदौर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में समिट का शुभारंभ करेंगे। इसमें निजी बस ऑपरेटर, परिवहन विशेषज्ञ, IT कंपनियां, उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिट का मुख्य फोकस मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और PPP मॉडल के जरिए बस सेवाओं को बेहतर बनाने पर रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ प्रस्तावित सीड बिल पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1966 का मौजूदा बीज कानून अब बदलते समय और नई कृषि चुनौतियों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। सरकार को किसानों और संगठनों से करीब 18,000 सुझाव मिले हैं और सभी सुझाव पर विचार के बाद ही कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए कानून में नकली और घटिया बीज बेचने वालों पर ज्यादा प्रभावी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है।
1: विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों की तरफ से ये सुझाव और मांग आई थी कि सीड एक्ट और पेस्टिसाइड एक्ट 1966 में बने थे, तब से लेके अब तक परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हुआ है और जरूरत है कि नया सीड एक्ट आए और पेस्टिसाइड एक्ट भी नया आए, क्योंकि एक बड़ी समस्या घटिया बीज, घटिया पेस्टिसाइड है। उन पर संपूर्णता से और गहराई से विचार करके हमारे किसानों के हित में, कृषि के हित में फिर एक्ट के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश में 17 सितंबर से 2 बड़े जनसेवा अभियान शुरू होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल कलेक्टरों को दोनों अभियानों को उत्सव के रूप में मनाने और तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। स्वामित्व अभियान के तहत 50 लाख से ज्यादा ग्रामीणों की संपत्तियों के निःशुल्क रजिस्ट्री कर उन्हें दस्तावेज दिए जाएंगे। वहीं सेवा से संकल्प अभियान के पहले दिन शाम 7 बजे प्रदेश भर में 58 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। उज्जैन के महाकाल लोक में अकेले 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाने की तैयारी है। राज्य सरकार का कहना है कि 1 महीने तक चलने वाले अभियान में जन भागीदारी से अलग अलग जन सेवा के काम किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया श्रीलंका यात्रा को दोनों देशों की रक्षा और रणनीतिक संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच श्रीलंकाई वायुसेना की L-70 एयर डिफेंस गनों के आधुनिकीकरण, NCC और नेशनल डिफेंस कॉलेज के बीच सहयोग समेत कई समझौतों पर सहमति बनी। इस यात्रा को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का कहना है,
2: श्रीलंका और भारत के जो रिश्ते हैं आपको बहुत बहुत पुराने हैं, 2500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और यही कारण है कि श्रीलंका के साथ एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते और जिस प्रकार से श्रीलंका में भी उड़ाव चढ़ाव होता रहता है, तो उसमें जिस प्रकार से भारत ने उनकी मदद की वो भी इस बात के उनको एहसास है कि भारत एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत ने उनकी जबरदस्त सहायता की। और यही नहीं, ये इकोनॉमिकली जब इवन जब साइक्लोन आया उधर भी की, तो ये ऐसे संदर्भ में जब हम देखते हैं कि अपने रक्षा मंत्री जी जब गए तो उन्होंने कुछ एक डिफेंस MOU दस्तखत किए और वो बहुत जरूरी है और जो कैपेसिटी और जो कैपेबिलिटी हमने अपने L70 को दी, वही उनको देने की कोशिश की।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की खनिज संपदा प्रदेश के विकास की बड़ी ताकत है। इसका इस्तेमाल पारदर्शी और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से किया जाना चाहिए। उन्होंने सिंगरौली को माइनिंग का मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के निर्देश दिए हैं, जहां DMF की राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि और पर्यावरण जैसे कामों को बढ़ावा दिया जाएगा। सागर के बंदा में अवैध शराब मामले से जुड़े आरोपियों के 5 अतिक्रमणों पर कल बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने मनीष लोधी के 3, चंद्रभान राजपूत और आशीष साहू के 1-1 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। भोपाल के 53 वर्षीय विकास चौधरी अपने अंगदान से 4 लोगों को नई जिंदगी देंगे। 6 दिन पहले ब्रेन हैमरेज के बाद उन्हें एम्स भोपाल में भर्ती कराया गया था, जहां 8 सितंबर को डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया। इसके बाद परिजनों ने दुख की घड़ी में अंगदान का फैसला किया। विकास का हृदय चेन्नई, लिवर इंदौर और दोनों किडनी भोपाल के मरीजों को दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम भोपाल के कोलार स्थित एक निजी प्लाजा में फिल्म हनुमान अंश देखी और इसकी तारीफ की। फिल्म नीव करौली बाबा के जीवन, भगवान हनुमान की भक्ति और सेवा की भावना पर आधारित है। शहडोल जिले के छोटे से गांव विचारपुर की 6 लड़कियों का चयन राष्ट्रीय U16 फुटबॉल कैंप के लिए हुआ है। IFF इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में शहडोल की टीम ने ग्वालियर और महू को 10-10 से हराया और फाइनल में इंदौर से 1-0 से हार कर उपविजेता रही। और अब बात मौसम की। 3 दिन की ब्रेक के बाद प्रदेश में मॉनसून फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मैहर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा भी शामिल है। 12 सितम्बर से इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग में भी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के अंतर्गत अशोकनगर की ग्राम पंचायत मुगावली के ग्राम खुजाई में आज शिविर का आयोजन किया गया है। मंदसौर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और डायट में मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपदा मित्र योजना के तहत आगरमालवा जिला आपदा प्रबंधन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा हेतु जिले में नामांकित 125 आपदा मित्रों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण कल से शुरू हुआ। सतना जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और जन समुदायों के पुनर्बहाली के कार्य किए जा रहे हैं। मुरैना में परिवहन विभाग द्वारा नियम विरुद्ध संचालित वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। भोपाल में सरकारी जमीन पर लंबे समय से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 करोड़ रूपये बाजार मूल्य वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। शिवपुर में महिला बाल विकास चंबल संभाग मुरैना की संयुक्त संचालक रेखा सिंघल ने आंगनवाड़ी केंद्र ढेंगदा का निरीक्षण किया। मंडला में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासनिक समिति की बैठक आयोजित हुई। शिवपुरी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत आगामी शिविर आज तहसील कोलारस में नगर परिषद के सामने कोलारस में आयोजित किया जाएगा। विदिशा में सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गौवंश के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। होली जी, अब समय हो गया है कार्यक्रम अनचाहे गीत का, तो आइए सुनते हैं श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम अनचाहे गीत। अनचाहे गीत इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है और सबसे पहली फरमाइश, जी हाँ, व्हाट्सएप पर हमें मिल चुकी है, जिसको तो आपको नाम बता दें। ये फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने, बलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं रोशन लाल देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, भूड़ चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका सिंह, आकृति सिंह और वंशराज सिंह। इसी गीत को पसंद किया है गोपालगंज से संदीप रोहतास ने। आप सभी सुनना चाहते हैं महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में पूरब और पश्चिम फिल्म से गीत, जो लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: मन चाहे कि इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है और आइए सुनते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से सुनना चाहते हैं। टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप कालका सिसकीत की फरमाइश की है शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टू बजाज ने। दुर्गा कॉलोनी हांसी से सुनना चाहते हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। इस गीत को पसंद किया है सप्तरंग श्रोता परिवार, कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले। पुनावले पुड़े से सुनना चाहते हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। गोपालगंज सागर से इसकी की फरमाइश की है सुनीता, अनीता, ममता, रेखा, सीमा, कमला, राम कुंवर, बिट्टू रानी। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज में सरस्वती चंद्र फिल्म से ये गीत, जो लिखा है इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करूं?
1: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।
2: जय गीत। इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब सुनते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है, सुना चाहते हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद, तरुण, श्रेणिका, श्रीनिजा। गोगावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री। इसी गीत की फरमाइश की है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। इसी गीत को सुनना चाहा है शुभापुर गांव शुभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता गौड़, दिव्यांशु यादव, संजय ढिंगिया, अनिल चैन, राधा नामदेव और दर्शन भाई ने। इसी गीत की फरमाइश की है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, मंदसौर मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी। भाई ग्राम भुइनापार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से देवनारायण साहू, कुमारी योगिता, कुमारी गीतिका, चंचल रानी साहू, त्रियांश और कुमार साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज को फिल्म मेरा साया में, शब्द रचना राजा मेहदी अली खान की, संगीत मदन मोहन का।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवे शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से। अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार। हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए।

आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए महात्मा गांधी की आत्मकथा का धारावाहिक वाचन।

0: नमस्कार, आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। अभी तक आपने सुना,
1: हे ईश्वर तू मुझे श्रद्धा दे। बकरी का दूध शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर दलाल ने मेरा ऑपरेशन किया जो बहुत सफल रहा। बिछोना छोड़कर उठने की कुछ आशा बन रही थी और अखबार वगैरह पढ़ने लगा था। इतने में रूलेट कमेटी की रिपोर्ट मेरे हाथ में आई। उसकी सिफारिशें पढ़कर मैं चौंका। भाई उमर सुबानी और शंकरलाल बैंकर ने चाहा कि कोई निश्चित कदम उठाना चाहिए। एक आध महीने में मैं अहमदाबाद गया। वल्लभ भाई प्राय प्रतिदिन मुझे देखने आते थे। मैंने उनसे बात की और सुझाया कि इस विषय में हमें कुछ करना चाहिए, क्या किया जा सकता है। इसके उत्तर में मैंने कहा, यदि थोड़े लोग भी इस संबंध में प्रतिज्ञा करने वाले मिल जाएं और कमेटी की सिफारिश के अनुसार कानून बने तो हमें सत्याग्रह शुरू करना चाहिए। यदि मैं बिछोने पर पड़ा ना होता तो अकेला भी इसमें जूझता और ये आशा रखता कि दूसरे लोग बाद में आ मिलेंगे, किंतु अपनी लाचार स्थिति में अकेले में जूझने की मुझमें बिल्कुल शक्ति नहीं है।
0: और अब इससे आगे इस बातचीत के परिणाम स्वरूप ऐसे कुछ लोगों की एक छोटी सभा बुलाने का निश्चय हुआ जो मेरे संपर्क में ठीक ठीक आ चुके थे। मुझे तो ये स्पष्ट प्रतीत हुआ कि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर रूलेट कमेटी ने

और मुझे याद है कि जितने लोग हाजिर थे उन सब ने उस पर हस्ताक्षर किए। उस समय मैं कोई अखबार नहीं निकालता था, पर समय समय पर अखबारों में लिखा करता था। उसी तरह लिखना शुरू किया और शंकरलाल बैंकर ने जोर का आंदोलन चलाया। इस अवसर पर उनकी काम करने की और संगठन करने की शक्ति का मुझे खूब अनुभव हुआ। कोई भी चलती हुई संस्था सत्याग्रह जैसे नए शस्त्र को स्वयं उठा ले, इसे मैंने असंभव माना। इस कारण सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई। उसके मुख्य सदस्यों के नाम बंबई में ही लिखे गए थे। केंद्र बंबई में रखा गया। प्रतिज्ञा पत्रों पर खूब हस्ताक्षर होने लगे। खेड़ा की लड़ाई की तरह पत्रिकाएं निकली और जगह जगह सभाएं हुई। मैं सभा का सभापति बना था। मैंने देखा कि शिक्षित समाज के और मेरे बीच बहुत मेल नहीं बैठ सकता। सभा में गुजराती भाषा के उपयोग के मेरे आग्रह ने और मेरे कुछ दूसरे तरीकों ने उन्हें परेशानी में डाल दिया। फिर भी बहुतों ने मेरी पद्धति को निभाने की उदारता दिखाई। ये मुझे स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन मैंने शुरू में ही देख लिया था कि ये सभा लंबे समय तक टिक नहीं सकेगी। इसके अलावा सत्य और अहिंसा पर जो जोर मैं देता था वो कुछ लोगों को अप्रिय मालूम हुआ। फिर भी शुरू के दिनों में ये नया काम धड़ल्ले के साथ आगे बढ़ा। एक ओर से रोलट कमेटी की रिपोर्ट के विरुद्ध आंदोलन बढ़ता गया, दूसरी ओर से सरकार कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने के लिए दृढ़ होती गई। रोलट बिल प्रकाशित हुआ। मैं एक ही बार धारासभा की बैठक में गया था, रोलट बिल की चर्चा सुनने गया था। शास्त्री जी ने अपना जोशीला भाषण किया। सरकार को चेतावनी दी कि जिस समय शास्त्री जी की वाग्धारा बह रही थी, वायसराय उनके सामने टकटकी लगाकर देख रहे थे। मुझे तो जान पड़ा कि इस भाषण का असर उन पर हुआ होगा। शास्त्री जी की भावना उमड़ी पड़ती थी। तो भी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। और आइए अब सुनते हैं ये भजन।

बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43 22

0: हेलो माँ। माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
1: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
0: News on AIR?
1: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
0: अरे वाह माँ, कमाल है।
2: News on AIR।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।
1: नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में

0: मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के 3रे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
3: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: 4 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष सुनीलकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था के 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष की संचार विभाग की निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। भू सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
8: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनकी आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सके। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
10: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है, ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है, बढ़ता दायरा बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लखनलाल पटेल का गाया ये बुंदेली गीत।
12: सब देशों में देश महान।

0: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: कार्यक्रम लोक संगीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं केशव सुल्लेरे का गाया ये बुंदेली गीत।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: लोक संगीत, आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं नथु सिंह की आवाज में ये बुंदेली गीत।

नथू सिंह के गाए इस बुंदेली गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत रूपक मैं हिंदी बोल रही हूँ। इस रूपक के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है रूपक मैं हिंदी बोल रही हूँ। आलेख डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जोहरी का है और प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।

0: देव देश जाति की सुखद प्यारी, जग में गुणकारी सुनागरी हमारी है।
1: पूर्व राजनयिक, अध्यापक, विचारक और हाल ही में संपन्न हुए 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व हिंदी सम्मान से नवाजे गए डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण कहते हैं,
2: हिंदी वो भाषा है कि जैसे लिखी जाती है वैसे बोली जाती है। हिंदी भाषा का जो पूरा स्वर विन्यास है, स्वर व्यंजन जितने भी हैं, वो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया की भाषाओं से। और इसका परिणाम ये होता है कि आप कोई भी ध्वनि उच्चारित कीजिए, ध्वनि किसी की भाषा की हो, हम देवनागरी में लिख सकते हैं। तो इसलिए होता क्या है कि विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए भी अगर देवनागरी को माध्यम बनाया जाए तो आप बहुत जल्दी उन भाषाओं को सीख सकते हैं। बल्कि आप अंग्रेजी भी शब्दों को अगर देवनागरी में लिख करके याद करें तो आप उनको जल्दी याद कर सकते हैं।
1: किसी सुदृढ़ राष्ट्र की पहचान होता है उसका समृद्ध साहित्य, और मेरे पास एक महान साहित्यिक परंपरा है जिसमें सूर, कबीर, तुलसी, रहीम, रसखान, जायसी सरी के महाज्ञानियों की अमृत वाणी समाहित है। पंडित जगन्नाथ मेरे साहित्य का गुणगान करते हुए कहते हैं,
3: बानी हिंद भाषण की महारानी, चंद्र सूर तुलसी से जामे, भय सुकवि लासानी।
1: प्रसिद्ध लेखक और आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं,
4: हिंदी तो अखिल भारतीय है। एक अरसे से हिंदी का प्रचार प्रसार अखिल भारतीय रहा है, अकेली ये भाषा है। और ये बात केवल आधुनिक काल का ही नहीं है, इसका आरंभ भक्ति युग से हुआ था। यानी समझ लीजिए कबीर, सूर, जायसी, तो आप देखेंगे तुलसीदास, ये कुछ संयोग है कि भक्ति आंदोलन जो हुआ वो अखिल भारतीय था।
1: प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान मेरी इस महान साहित्यिक परंपरा के अमिट हस्ताक्षर हैं। प्रेमचंद ने मुझे दलितों, पीड़ितों और शोषितों की आवाज बनाकर जनभाषा का रूप दिया, तो वही प्रसाद, दिनकर और निराला ने मुझ में ओज भरा। प्रकृति के अद्भुत चितेरे सुकुमार कवि पंत ने मुझे ही भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया।
5: कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से झर, लूट रही घाटी में लिपटी धूप छांव में ईश्वर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर, मधुकर दल तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वनप्रिय कोयल।
1: मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्त्री के नाराश्य और पीड़ा की ही सहयोगिनी नहीं, वरन सामाजिक मान्यताओं, रूढ़ियों और वर्जनाओं को तोड़ती उसकी निर्भीकता की भी आवाज बनी। अमृता प्रीतम का ये गीत उसका प्रमाण है।

मेरी इसी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान कर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुझे सब उन्नति का मूल आधार कहा और मेरे उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

0: स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता हुई तो मेरे जननायकों ने मुझे ही सबसे सुयोग्य पाया और स्वतंत्रता आंदोलन एक तरह से मेरा ही आंदोलन बन गया। वंदे मातरम के जय घोष के साथ ही स्वाधीनता का बिगुल बज उठा।
1: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम। तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम।
0: स्वतंत्रता आंदोलन ने संपूर्ण राष्ट्र की आवाज ही नहीं बल्कि मैं देश प्रेम और स्वाभिमान का प्रतीक भी बनी, माँ भारती के वीर सपूतों के प्रेम की अधिकारिणी भी। अमर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के शब्दों में,
2: लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं हिंदी, पहनना ओढ़ना खाना हिंदी।
0: संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण जटिया बताते हैं,
3: हमारी भाषा जो स्वतंत्रता के संघर्ष की भाषा थी, वंदे मातरम कहकर के जो हम देश में क्रांति लाने की बात करते थे, वंदे मातरम के स्वर से और शहीदों ने अपने आप को फना कर दिया, बलिदान हो गए। फिर सुभाष को देखें हम तो सुभाष चंद्र बोस, उन्हें जय हिंद का नारा दिया, उन्हें जो तराना कहा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा, शेर हिंद आगे बढ़ मरने से तो कभी न डर, तलक फलक उठा के सर जोश कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, ये भाषा कौन सी थी।
0: स्वतंत्रता आंदोलन में मैंने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर स्वाधीनता की आवाज को और मुखर किया। राष्ट्रीय एकता के लिए मेरा महत्व बताते हुए आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने कहा,
4: हिंदी द्वारा समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है।
0: चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था,
5: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में 10 अप्रैल 1935 को कहा था, अगर हिंदुस्तान को सचमुच एक राष्ट्र बनना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है।
0: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त मुझे राष्ट्रभाषा बनाने की कामना करते हुए कहते हैं,
6: मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती।
0: स्वतंत्रता के नवप्रभात ने नवराष्ट्र को प्रगति पथ पर अग्रसर करने का उत्तरदायित्व मुझे ही सौंपा गया। 14 सितंबर 1949 को मैं राजभाषा के पद पर आसीन हो गई। आजादी के बाद धीरे धीरे भाषा का सवाल कुछ जटिल होने लगा, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य उसमें जुड़ते चले गए। संसद में हिंदी दिवस पर बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ओर स्पष्ट संकेत किया था, समाधान की दिशा भी सुझाई।
7: हिंदी को हम चाहते हैं बढ़ाना, हमारे सामने ये बात थी और महात्मा जी ने बहुत जोर दिया था, लेकिन जहां आप हिंदी को देखेंगे एक मुकाबले में और भाषाओं के भारत की, तो आप मैदान में लड़ाई के पड़ जाते हैं और उससे हिंदी की उन्नति नहीं होती, नुकसान होता है। हिंदी की सेवा दूसरे को गिराना नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदी की सेवा के साथ जहां तक बन पड़े और भाषाओं, हमारे देश की भाषाओं की सेवा होनी चाहिए।
0: राजभाषा प्रचार समिति वर्धा के सुझाव पर 14 सितंबर 1953 से इस दिन को राजभाषा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। मैं आज इस बात से चिंतित हूँ कि मैं राजभाषा तो बन गई लेकिन मेरे देशवासियों को मेरे इस रूप से शायद उतना लगाव नहीं हुआ। कार्यालयों में मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण बताते हैं।
8: कार्यालयी हिंदी को जिस तरीके से सामने लाया गया, वो भी मैं तो समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी दुर्भी संधि का हिस्सा है। जिस इंजीनियर को हम जानते हैं, जब उसको अधिशासी अभियंता वो बोलता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, तो लोग नहीं समझ पाते हैं। जबकि जो प्रचलन में शब्द हैं, जब भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है तो वो ज्यादा ग्राह्य होते हैं। तो एक ऐसी क्लिष्ट हिंदी बना दी गई जो कार्यालयों के प्रयोग में आती है, ट्रांसलेशंस में आती है, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए, उन सब नियमों के कारण वो एक आबद्ध भाषा हो गई, एक चार दीवारी में बंद भाषा हो गई, वो उसमें खुलापन गायब हो गया।
0: वो इसका समाधान भी बतलाते हैं।
8: जो भी कार्यालयों में काम करने वाले लोग हैं, वे यदि वो भाषा लिखें जो वो खुद बोलते हैं तो ज्यादा प्रभावी होगी। और धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब सरकार ने भी बहुत नियम बदले हैं और वो कहते हैं अगर आप हिंदी लिख रहे हैं और कोई शब्द का आपको समानार्थी शब्द नहीं मिल रहा है, अंग्रेजी का शब्द दिमाग में आ रहा है, तो उसको देवनागरी में आप लिख दीजिएगा, तो इससे ग्राह्यता बढ़ती है।
0: गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं, ये बता रहे हैं संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण जटिया।
3: हमने इस सारे देश को तीन भागों में बांटा हुआ है। जो हिंदी भाषा भाषी प्रदेश हैं, जहाँ हिंदी सहज रूप से बोली जाती है, तो ऐसे प्रदेश को क कहा है, क क्षेत्र हो गया। किंतु हिंदी से उद्भूत या हिंदी के समकक्ष समझे जाने वाले जैसे गुजराती, मराठी, तो ऐसी जो भाषाएं हैं उनको हमने ख क्षेत्र को कहा है, और बाकी की जो भाषाएँ हैं वो ग क्षेत्र में चली गई है। इस तरह से देश को तीन क्षेत्रों में बांट करके, क क ग क्षेत्रों में बांट करके, और हम हिंदी के प्रगामी प्रयोग का और विस्तार करने का उपाय करते हैं।
0: मुझे आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मेरे प्रति लोग हीन भावना रखते हैं, जो मेरी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इस बारे में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं,
9: अंग्रेजी की जो पकड़ थी उसकी प्रभुसत्ता हो गई हमारे देश में। तो मम्मी डैडी, अब मम्मी डैडी कहने की क्या जरूरत है, जब अम्मा पापा या माता पिता यही पर्याप्त है, तो इसमें कौन सी नई ज्ञान हो जाती है यदि आप मम्मी डैडी कहोगे। ये सब हीन भावना अंग्रेजों ने भरा है।
0: डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण कहते हैं,
8: एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया है लोगों के मनों में कि अंग्रेजी जानने से ही प्रगति होगी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अच्छी भाषा, चाहे वो अंग्रेजी हो हिंदी हो, उसकी तो खासियत ही कुछ और होती है, उसको वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हम गलत अंग्रेजी बोलने वालों को बहुत सम्मान देते हैं, अच्छी हिंदी बोलने वालों को उतना सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि हम अभी भी उस मानसिक गुलामी के अंदर जी रहे हैं जो उपनिवेश काल ने हमको दी है। लेकिन वक्त बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है, सरकारी नीतियां कुछ करें या न करें, लेकिन जो जन समुद्र है वो तो उस भाषा को बोलता है, और भाषा तो लोगों के माध्यम से जिंदा रहती है।
0: विविधताओं से भरे मेरे देश की पहचान है इसकी एकता और अखंडता। मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता होती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने देश को एक साथ जोड़ने वाली कड़ी मैं ही हूँ। कश्मीर के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बता रही हैं कश्मीर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जोहरा अफजल।
10: कश्मीर में तो हिंदी की हमारी स्थिति अच्छी है, कुछ वर्ष पूर्व थोड़ा सा कम हो गया था वहाँ, यहाँ कॉलेज स्कूलों में परिस्थिति वश, बट आजकल तो ठीक है, स्कूलों में पढ़ाई जा रही है और कॉलेजेस में भी है। कश्मीर में हिंदी को लेकर थोड़ा सा एक अलग मानसिकता थी, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी ये एक पर्टिकुलर वर्ग की भाषा है, तो इसलिए लोग नहीं पढ़ते थे। मगर अब धीरे धीरे धीरे धीरे ये चीजें जो है अब खत्म हो रही हैं और लोग इन तरह की विचारधारा से बाहर आ रहे हैं। टीवी और रेडियो के कारण

0: ये है, दक्षिण भारत में हिंदी का सबसे बड़ा विभाग कालिकट विश्वविद्यालय का है। यहाँ के जितने भी सामान्य लोग हैं उनकी भाषा तो यहाँ की मातृभाषा मलयालम है, लेकिन बाहर से जो भी आते हैं उनसे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ही इस्तेमाल किया जाता है।
1: गुजरात के लोग मुझसे कितनी निकटता का अनुभव करते हैं बता रहे हैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजकोट के पूर्व सदस्य अशोक अग्रोही।
2: राजभाषा जानना, हिंदी जानना, हिंदी में काम करना, ये गौरव की बात मानते हैं, क्योंकि गुजराती की लिपि भी देवनागरी लिपि के आसपास होती है और बोलचाल में भी ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो वो अपने भले ही गुजराती के शब्द इस्तेमाल कर लें बीच में, लेकिन वो हिंदी में काम करना या हिंदी में बोलना चालना बहुत पसंद करते हैं। एक बात का मैं खास तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा कि किसी भी गुजराती को अगर अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी माध्यम से कोई प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वो लोग जल्दी सीख पाते हैं।
1: वैश्विक परिवेश में आज जहाँ ओर मेरी गूंज है, आज मैं विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा बन चुकी हूँ। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाड, गुयाना, सूरीनाम, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका सहित कई देशों में आज मुझे जानने समझने वाले लोग हैं, लेकिन आज मैं नम आंखों से याद कर रही हूं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार बोलकर मेरा मान बढ़ाया था।
3: गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार, हिंद हिंदी ने बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व चरण से डोला, कह कैदी कविराय मैम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी।
1: मैं भूली नहीं हूँ उन गिरमिटिया मजदूर साथियों को जो अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ मुझे यहाँ लाए और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। विदेशी धरती पर मैं ही उनके जीने का एकमात्र सहारा थी। कई वर्षों तक विदेशों में ही रहकर मेरी सेवा करने वाले डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण बताते हैं,
4: मैंने ये पाया कि लोगों में बहुत उत्साह है भारत को जानने का। वे किताबों के माध्यम से, हमारी बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से भारत को जितना भर जानते हैं उसको और ज़्यादा समझने के लिए, फिल्मों का और ज़्यादा आनंद लेने के लिए, हमारे संगीत का आनंद लेने के लिए वे हिंदी सीखना चाहते हैं।
1: अपने देश की मिट्टी, उसकी खुशबू क्या महत्व रखती है ये दूर देश में रहने वाले प्रवासी ही जानते हैं। मुझे अपना जीवन सार्थक लगता है जब मैं उन्हें अपने देश से जोड़े रखने का माध्यम बनती हूँ। लगभग 12 वर्षों से लंदन में रहने वाले प्रमोद शुक्ला बताते हैं,
5: लंदन ट्यूब में ट्रैवल करते हुए कितने ही लोग हिंदी में बात करते सुनाई दे जाते हैं, जिसे सुनकर हमारे चेहरे पर हंसी आ जाती है। लंदन में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ ज्यादा हिंदी भाषी लोग रहते हैं, जैसे कि वेम्बली, हारो, साउथ हॉल, क्रॉयडन और इल्फर्ड। वहाँ केवल आप हिंदी में ही बातचीत करके अपना काम चला सकते हैं। यहाँ हम लोग होली, दिवाली, नवरात्रि और सारे भारतीय त्योहार में सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हिंदी में ही करते हैं। बहुत से बच्चे हिंदी और संस्कृत लिखना सीख रहे हैं। भारत से दूर होकर भी हम सब भारतीय और प्रवासी भारतीय हिंदी की वजह से ही एक सूत्र में पिरोए हुए हैं।
1: अपने देश से लगभग 20 वर्षों से दूर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अतीश जैन कहते हैं,
6: भाषा हमारे लिए खाली एक कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है बल्कि हमारी आइडेंटिटी की तरह यहाँ पर यूज होती है। तो कहीं भी हम लोग जैसे जा रहे होते हैं, कोई रास्ते में हमें हिंदी बोलने वाला मिल जाता है तो एक हम लोग का कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कितने टाइम से बिछड़ा हुआ दोस्त या भाई मिल गया हो।
1: मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि कई विदेशी लोग मुझसे और मेरे देश से इतनी आत्मीयता अनुभव करते हैं कि यहीं के होकर रह जाते हैं। ऐसी ही हैं हंगरी से आई दिल्ली विश्वविद्यालय की अतिथि प्राध्यापक डॉक्टर मार्गेट कोविस।
7: मुझे हिंदी से

0: बहुत प्यार है। मैं बता सकती हूँ कि मुझे हिंदी से एक तरफ प्यार है, मैं हिंदी से प्यार हूँ पर हिंदी मुझसे प्यार नहीं करता। पर मुझे सबसे अच्छा हिंदी बात करना, पढ़ना और लोगों से हिंदी सुनना अच्छा लगता है। मैंने केदारनाथ सिंह जी से, नमवर सिंह जी से और दूसरे लोगों से भी, विद्वानों से कुछ ताल्लुक हुआ, तब से मेरा ये एम्बिशन है कि मैं हिंदी, अगर मुझे कभी और समय मिलेगा तो मैं हिंदी और ज्यादा अच्छा जानना चाहती हूँ।
1: देखिए, हमारे देश की संस्कृति में रच बस कर रूस की डचियाना कुचिनोवा कितनी खुश हैं।
2: हिंदी सीखने से पहले मुझे भारत के बारे में बहुत बहुत कम जानकारी मिल रही थी, लेकिन हिंदी सीखने के साथ ही प्यार हो गया, भगवान को मालूम हो गया, ऐसे ऊपर वाले को मालूम हो गया कि ऐसे क्यों होता है। और क्या बताऊँ, मैं हिंदी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आजकल दिल्ली में तो लोग ज़्यादातर खिचड़ी बोलते हैं, अंग्रेजी हिंदी खिचड़ी बोलते हैं। लेकिन आजकल जो शिखर सम्मेलन हमारे दो देशों के बीच होते हैं, वे रूसी हिंदी में ही होते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात हमारे लिए।
1: मैंने भी कभी स्वयं को सीमाओं में नहीं बांधा। भाषा का प्रवाह ही उसे जीवंत बनाता है। मुझ में आत्मसात करने की प्रवृत्ति सदैव रही, इसीलिए मैंने देशी विदेशी किसी शब्द से कभी दुराग नहीं किया। तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बांग्ला, फारसी, अरबी के अलावा अंग्रेजी के भी कई शब्द मुझ में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे मेरे ही अंग हों। स्कूल, कॉलेज, डायरी, ट्रेन, प्लेटफॉर्म जैसे कुछ ऐसे ही शब्द हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में आदान प्रदान करना आज समय की मांग है। तभी तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अभी हाल ही में कई शब्दों को सम्मिलित किया जिसमें सबसे अधिक मेरे ही शब्द हैं। चटनी, पापड़, पाव भाजी, खीर, धोती और चूड़ी जैसे अनेक शब्द। मेरे वेद, मेरे ज्ञान और मेरे आध्यात्म से सभी प्रकाशमान हों। वसुधैव कुटुंबकम की मेरी संस्कृति संपूर्ण विश्व का मार्ग प्रशस्त करे। मैं जानती हूँ कि आज विश्वग्राम के समय में भी आपका मन हिंदी में ही धड़कता है, सपने देखता है, आह्लादित होता है और गुनगुनाता है, क्योंकि मैं विचार भी हूँ, संस्कार भी हूँ और आपके विवेक का आधार भी हूँ। बस थोड़ी सी जरूरत है एक दिशा की, प्रकाश की।
3: आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में दियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ, आंखों से ओझल वर्तमान के मोह जाल में, आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं।
4: मैं हिंदी बोल रही हूँ, ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जोहरी, वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी, नाट्यांश के कलाकार एस एम नोमान और मनोज माइनकर, प्रतिनिधि स्वर अभिनय श्रीवास्तव और नवोदिता मिश्रा, प्रस्तुति सहायक नीरज सोनी और हरदीप सिंह, प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।
5: अभी आप सुन रहे थे रूपक मैं हिंदी बोल रही हूँ। इस रूपक की प्रस्तुति थी डॉक्टर संजय सिंह वर्मा की।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों की प्रतीक्षा।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह का गाया ये गीत फिल्म मिकी वायरस से, गीत और संगीत हनीफ शेख का।